0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर.
3: आज भी मैं उनके साथ बैठ के एक घंटा इस चीज के ऊपर मशावरत करके आया हूं कि किस तरह से ना सितंबर के महीने

पंजाब जी वजीर आला चवे थी तो खेस भारत न पर पाकिस्तान के बेन सूबन में खतरो है। आऊँ ऐलान करें तो मुख्य पंजाब के बहरन में को भी खतरो ना है। धांधली से इक्तदार में आयल पंजाब की वजीर आला के आवाम रद्द कर छो है। खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर जो लाहौर में खिताब सुहेल आफ्रीदी तो पंजाब पुलिस असाज मानून के तंग न कर पंजाब पुलिस थानन में वापस हली वे सूबे जो अवाम पुलिस से नफरत करे तो। वसन अथा बाबुल मंदम के बंदिश रोकने लाए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इसराइल का इंटेलिजेंस मदद घुरी वरती। इसराइली अखबार दावा कई है तो सऊदी वली अहद इसराइल ए नार मुल्क से सीधी रीत अमरीकी सेंट्रल कमांड वसीले अणसिधी रीत राबता करने की मदद घुरी। अंसारुल्ला खिलाफ हमलों से अमेरिका के इनकार सऊदी अरब के दुखियन में विझी छो। बे पासे यमन के हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्ला पारा सऊदी अरब के इलाके खमीस मशतक में एयरबेस के निशान बढ़ाने की दावा। सऊदी शहरी दिफा खाते पारा खमीस मशतक ए अबा के जारी रखने खतरे जो अलर्ट जारी वापस वरतो। सिंध असेंबली में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2026 अक्सरियती राय से मंजूर। एम क्यू एम पी टी आई जमायत इस्लामी के मेंबर्स जो घोर मेंबर्स पारा स्पीकर

डालो तो बाप तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। इससे ज्यादा हमाकत की बात क्या हो सकती है कि आप किसी की मोहब्बत छीन लो और कहो कि उसकी जगह आप मुझसे मोहब्बत कर लें, और ना आपके अखलाक उस काबिल हो, ना आपके अंदाज उस लायक हो कि आपकी तरफ कोई मुतवज्जे हो। और फिर तसल्ली क्या, वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, और इस वाक्य के बाद तुम सब बड़े नेक इंसान बन जाना, बाद में बूढ़े होकर तौबा कर लेंगे। हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, जो गलत काम करना चाहते हैं कर लेते हैं, कहते अच्छा हज कर लेंगे फिर, या उमरा करने चले जाएंगे फिर माफी हो जाएगी, अच्छा कुछ सदका कर देंगे, कोई नहीं अभी तो जो कर रहे हैं कर रहे हैं, कर तो लें। जो इस वक्त कर सकते हैं वो तो काबू में नहीं आ रहा, जो दिल में आया है वो तो करना है, चाहे हराम है चाहे हलाल है, चाहे जायज है चाहे नाजायज है। हम ऐसे ही करते हैं ना, एक बात का काम है हम कहते हैं अच्छा थोड़ा सा एक दफा करने से क्या होगा, चलो ये आखिरी दफा है। जैसे बच्चे को दूध छुड़ा, अरबी जबान में बच्चे से तशबीह दी गई है कि जो माँ दूध छुड़ाना चाहती बस वो एकदम छुड़ा देती है। तो इंसान का नफ्स भी जो चीज हराम है ममनू है छोड़नी है बस छोड़ देनी, काट के रख देनी, खत्म स्टॉप। इसलिए कि थोड़ा सा चख के तो भूख और बढ़ जाती है। लेकिन यहां उन्होंने क्या सोचा, अभी तो जो दिल में है कर लो एक दफा, वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, इसके बाद तुम नेक बन जाना। जैसे हमारे यहाँ मुहावरा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये वही कॉन्सेप्ट है कि जो करना है कर लो बाद में नेक बन जाएंगे। ये एक और तरीका है बाद के वादे का। अभी तो हम जवान हैं और अभी तो हमारी शादी भी नहीं है, अभी से हिजाब ओढ़ लें, कपड़े किसको पहन के दिखाएंगे, जेवर किसको दिखाएंगे, और बाकी सब भी तो ऐसे करते रहे। लो अब हमारी बारी आए तो हम इताअत गुजार बन जाए। तकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, अभी कर लें

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News. आप सुन रहे थे
3: इलाइकन में ॿिए ॾींहुं बि किथे तेज़ त किथे हल्की बरसाति कराची जे इलाइक़े मलेर गुलशन हदीद क़ाइदाबाद ऐं बरपासे में वसकारो हैदराबाद में गजगोल सां वसकारे बाद हिस्को जा 70 फीडर बंदि केतिरनि ई इलाइक़नि खे बिजली बंदि थी वई हिस्को जा 70 फीडर बंदि केतिरनि ई इलाइक़नि खे बिजली जी फरहमी मोतल थर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ककर गजगोल सां वसी पिया मिठी बरसा घर ते विज किरण जे नतीजे में हिकु औरत फोत टे ॿार ज़ख़्मी जाम छोरो टंडो मोहम्मद खान मिठी ठठो सिजावल ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो नंगर पार्कर मीरपुर भठेरो करे गवर जाती मातली शेख बरकियो डेरो लाल हाला ऐं बरपासे में तेज़ बरसाति खोरवा जोक शरीफ राजू खानाणी बिरशाह बुलड़ी शाह करीम ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो तेज़ हवा सबबि छपरा ऐं इमारतुनि ते रखियल सोलर प्लेटूं उॾामी वियूं बरसाति दौरान बिजली ऐं मवासिलाती निज़ाम डावांडोल कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़े सरजानी टाउन में औरत ऐं ॿ ॿार बेदर्दी सां क़तलु हिकु डींगरी ज़ख़्मी पुलिस मूजिबि सेक्टर 7D जे इलाइक़े में गरबा टे लाश हथ कया विया मक़तूलनि में औरत महविश सदस्य ॿ ॿार 6 वरनि जी हिरा ऐं 5 सालनि जो हुनेन शामिल पुलिस जो चवणु आहे त औरत ऐं ॿिनि ॿारनि खे तेज़ धार औज़ार सां क़तलु कयो वियो शक जे बुनियाद ते मक़तूलनि जो मुड़ुसु गिरफ़्तार वाक़िए जे मुख़्तलिफ़ रुखनि में जांच जारी घरू वज़ीर वाक़िए जो नोटिस वठंदे SSP वेस्ट खां रिपोर्ट तलब करे वरिती

कंहिं सियासी पार्टी अॻवान या सूबाई हुकूमत खे इस्लामाबाद जा रस्ता बंदि करण जो अख़्तियार नाहे। अवामी उहिदो रखंदड़ माण्हू बि इस्लामाबाद जे रस्तनि ते कब्ज़ो नथो करे सघे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट PTI जे 27 सेप्टेंबर वारे एहतजाज ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते लिखत में फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। चीफ जस्टिस जी सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच 4 सिफ़नि ते ॿधल फ़ैसिलो जारी कयो। फ़ैसिले में चयो वियो आहे त कंहिं सियासी पार्टी या अॻवान खे इस्लामाबाद जे इंटरचेंजिस ऐं टोल प्लाज़ा ते कब्ज़े जो अख़्तियार नाहे। इस्लामाबाद वेंदड़ रस्तनि ते रंडक विझणु शहरनि जे बुनियादी हक़नि जी भञकड़ी आहे। कंहिं मार्च जुलूस या रैली सां शहरनि जी आज़ादु चुरपुर मुतासिर नथी करे सघिजे। इस्लामाबाद में वापार ऐं कारोबारी आॾो रंडक विझण जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। अदालत PTI जे एहतजाज ख़िलाफ़ दरख़्वास्त उकलाए छॾी। PTI चेयरमैन जी पंजाब सरकार ऐं राणा सनाउल्लाह खे एहतजाज आॾो रंडकू न विझण जी अपील। बोडीर में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल दौरान बैरिस्टर गोहर चयो त इंसाफ़ वठण लाइ इस्लामाबाद वञी रहिया आहियूं। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जो वॾो वज़ीर पुरअमन सियासी शिकतान घटाइण लाइ मुफ़ाहिमत ऐं बहितर क़दमनि जी ज़रूरत आहे। हुकूमत सख़्तु क़दम खणण बदिरां मुफ़ाहिमत ॾांहुं वधे। गोली न हलणु घुरिजे। गोलियूं हलाइण जो वक़्तु ख़तमु थियणु घुरिजे।

0: पर्यावरणी मामलनि जे वफ़ाक़ी वज़ीर पारां पीटीआई जे इम्कानी एहतजाज ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाईकोर्ट जे फ़ैसिले जी अॼां तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त फ़ैसिले में इस्लामाबाद वासियुनि जे हक़नि बाबति वाज़े हिदायतूं ॾिनियूं वियूं आहिनि। पीटीआई केपी सरकार जा फंड्स लॉन्ग मार्च में इस्तेमालु कंदी आहे। हर साल इस्लामाबाद ते जथनि जी सूरत में हमलियावर थींदा आहिनि। अदालती फ़ैसिले खां पोइ ॿीहर का चढ़ाई कई त नुक़सान जा ज़िमेवार हू पाण हूंदा। सियासत छॾे तशदुद ऐं डिफेयर जो दॻु वरितो वियो त उन जी इस्लामाबाद में का बि इजाज़त न आहे। पंजाब जी वज़ीर आला चवे थी त खेसि भारत न पर पाकिस्तान जे ॿियनि सूबनि मां ख़तरो आहे। आउं ऐलान करियां थो त मूंखे पंजाब जे ॿाहिरनि मां को बि ख़तरो न आहे। धांधली सां इक़्तदार में आयल पंजाब जी वज़ीर आला खे आवाम रदि करे छॾियो आहे। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे वॾे वज़ीर जो लाहौर में ख़िताबु। सुहेल आफ्रीदी चयो त पंजाब पुलिस असांजे माण्हुनि खे तंग न करे पंजाब पुलिस थाणनि में वापसि हली वञे। सूबे जो आवाम पुलिस सां नफ़रत करे थो। वसीन अथां बाबुल मंदम जे बंदिश रोकण लाइ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इसराइल खां इंटेलिजेंस मदद घुरी वरिती। इसराइली अख़बार दावा कई आहे त सऊदी वली अहद इसराइल ऐं नार मुल्कनि सां सिधी रीति ऐं अमरीकी सेंट्रल कमांड वसीले अणसिधी रीति राबता करण जी मदद घुरी। अंसारुल्लाह ख़िलाफ़ हमलनि ते अमेरिका जे इनकार सऊदी अरब खे ॾुखियनि में विझी छॾियो। ॿिए पासे यमन जे हौसी अक्सरियती तनज़ीम अंसारुल्लाह पारां सऊदी अरब जे इलाइक़े ख़मीस मशतक में एयरबेस खे निशानो बणाइण जी दावा। सऊदी शहरी दिफ़ा खाते पारां ख़मीस मशतक ऐं अबा जे जारी रखणु ख़तरे जो अलर्ट जारी वापसि वरितो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
3: जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

Super!

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, फिर रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे। तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान।

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक वन। कहाँ सुना, माफ कीजिएगा, शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप। जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं इसमत चुकाई, कैसे किस्मत खुलाई, आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। Give a bash at the bad with the martial mad, the mirror instinct animalistic. Mad magician, yeah, mathematician. I never take second position, I'm getting ballistic. Cataclysmic, bilkulously, dekho meticulously. Love's mere medicinal se, love kiya maine kalam se. Sach bola maine kasam se, rang dekho kaise badalte. Dikhte hain sabke, karte kab se. Baatein pakki, baatein kacche. I've had enough of it, but I keep going. Got no option but to keep flowing. Keep the toxic out of my zone. Dukkin the sharif up me off of my throne. But before I gotta go, let me tell you this. One thing I need you to know, if you ever need a friend, you can call my phone.

0: कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।
1: जो शहर जो घर सकरंट आए सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: போன் நகலந்து சாபுதை சோரா.
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है.
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8.

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सुबुह जो 10 वगे खां मंझंद 2 वगे ताईं ऐं अंगारो ऐं अरबा मंझंद 3 वगे खां शाम 6 वगे ताईं एड्रेस रहमत मैदान
1: प्रोप्राइटर अली बख्श खासकेली अॼु ई राबितो करियो 03002963322
2: जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजण तो कोई तवां लाए आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिला जारी आहिन 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD 5 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV CMW CNA खास सहूलत स्कॉलरशिप्स मौजूद बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री जरे त DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखला फीस आई फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया हिते तवा के मिलंदा एयर कंडीशनड क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज मुकम्मल लाइब्रेरी तजुर्बेकार फैकल्टी हॉस्टल पिक एंड ड्रॉप आई फिजियोथेरेपी OPD जी बेहतरीन सहूलियत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा आई पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे याद रखो सीट्स महदूद आहिन तहे करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस OT हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबितो 07115635642 ऐं 03108166111 खुशखबरी हदन जे मुख्तलि बीमारियुन में मुब्तला कंधरा ऐं पसगिरदाईअ में रहण वारनि शहरनि जे लाइ खु़शख़बरी हिकु रोज़ा मुफ़्त मेडिकल कैंप जंहिं में जिना हस्पताल कराचीअ जो मशहूरु मारूफ़ हॾन जी बीमारियुनि जो माहिर सर्जन डॉक्टर मोहम्मद उमर मरीज़नि जो मुफ़्त मुआइनो कंदो तारीख़ 19 सेप्टेम्बर छंछरु जे ॾींहुं सुबुह 10 वॻे खां मंझंदि 3 वॻे ताईं हॾन जी बीमारियुनि में मुब्तला मरीज़ हॾन ऐं जोड़नि जे सूर चेल ऐं कुनरग जो सूर हॾन जी TB ऐं कैंसर ॿारनि में हॾनि जा मसला शुगर जे मरीज़नि में ज़ख़्म जो न भरिजण ऐं हॾन में मुब्तला मरीज़नि जो स्पेशल चेकअप कयो वेंदो त देर छा जी हिन मुफ़्त मेडिकल कैंप मां फ़ाइदो हासिल करियो एड्रेस डॉक्टर भागचंद शिफ़ा डी केयर क्लिनिक मेन रोड कंधरा राबितो 03331713226
3: जोड़न जे सूरत सफ़ा मारे छॼो आहे
4: अदात न जो इलाज छो नथो कराई
3: इलाज कराए कराए थकिजी पियो आहे
4: अदा हिन सूर जो इलाज ख़ात्माए दर्द दवा सां मुमकिन आहे जी हाँ ख़ात्माए दर्द एक अहिड़ी दवा जेका सूर खां ॾे निजात सूर चाहे जोड़न जो हुजे पठन जो हुजे चेल जो हुजे या घिंटिया जो कुन रग जो हुजे या वरी जिस्म जे कंहिं बि नंढे वॾे सूर जे लाइ आज़मूदा दवा आहे 7 ॾींहनि जी दवा सिर्फ़ 450 रुपयनि में ख़ात्माए दर्द मिलण जो हंधु बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं अल नूर दवा खाना रोहड़ी राब्ते जे लाइ 03055580016
5: मौसर होम्योपैथिक इलाज अब सखर शहर में डॉक्टर आजम अली मुगल के साथ मेदे की खराबी गैस बदहजमी कब्ज खूनी उबारी बवासीर अर्कुन निसा घुटनों जोड़ों और कमर दर्द गुर्दों की पथरी समेत मौतदित अमराज के लिए मुस्तनद होम्योपैथिक तशखीस और इलाज हर मरीज का इनफरादी मुआयना मुकम्मल रहनुमाई और बीमारी की नौयत के मुताबिक इलाज टाइमिंग रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जुम्मा तातील एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक पुलिस हेडक्वार्टर चौक होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप के बराबर में रेस कोर्स रोड सखर राबता 03112082600 एंड 03337143311 डॉक्टर आजम अली मुगल
6: नौशहरो
7: मीरपुर खास
6: लाड़काना
7: सखर
6: गूंज रही है हर जगह पर
7: सिंध की आवाज
6: जीए FM 88 नेटवर्क

तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। तमाम खूबसूरत मासूमी सोने समातम मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम के समंदर जादू की बारिश आसमान खजानों के साथ हुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नींद से जागता समय से आसमान जिंदगी से मौत सांस से तर्दगन से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डीज कैन ब्यूटी शो। प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डीज़ की ब्यूटी शो में आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब। प्रोग्राम में फन होगा, प्रोग्राम में बातें होगी, प्रोग्राम में डीज़ की ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें की जाएंगी और डीज़ की ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप मौजूद हैं। आप लोगों को सही से बताया जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह की खूबसूरती में चार चांद लगने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश आपके लिए अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप खूबसूरत रहना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए पहचानिए ताकि आप सही से जो है ना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सके और सही वाले प्रोडक्ट्स अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सके। क्योंकि कई मरतबा ये चीज भी थोड़ा हमें डिस्टर्ब कर देती है कि भाई हमने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना है, कौन से प्रोडक्ट हमारी स्किन के मुताबिक है। तो अगर हम यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जिक्र करते हैं, बातें करते हैं, आप लोगों को जरा बताते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ तो होगा ना जो इतनी ज्यादा बातें बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए हमारे साथ और अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या तरीके कार होने वाले वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन कहते ना कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है तो जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी से ब्यूटीफुल बनने के लिए रेडी शेडी हो जाइए और हमारे साथ साथ मजे करने के लिए भी रेडी शेडी हो जाइए और इसी के साथ साथ आप जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत की वह हालत उनके से ही आपकी हालत उम्मीद शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुबकुल मूड के साथ सुबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता है ना जब हम एंट्रियां मारते हैं बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद है। इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ लातादाद सी बातें करने वाले और जाहिर सी बात है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी चर्चे होने वाले। चर्चे होंगे तभी तो आपके थोड़े बहुत से खर्चे होंगे ना, थोड़े बहुत से क्या मतलब अपने ऊपर खर्चा किया करें अच्छी बात होती है। और अगर आप हाँ जी हमारे साथ से जुड़ना चाहते हैं तो तरीके कार क्या होंगे प्रोग्राम के वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मिया खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होठों पर 440 और किस्माल लाने का काम करेगी बैजानी सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होठों पर 440 और किस्माल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम हमारे पास मौजूद है जी एक बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा। तो हम ऐसा करते हैं प्रोग्राम की स्टार्टिंग में एक बहुत प्यारा सा कसीदा सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आप लोगों से मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो इस्तेमाल कीजिए और हमेशा खूबसूरत होती रहिए।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा जिसे हम सब मिलकर सुन रहे थे और इसके साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें होंगी, लेकिन साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो शामिल प्रोग्राम कैसे होने वाले हैं ये भी आप लोगों को जरा बताएंगे। तो अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ऐसा करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है ना आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है वो जरा आप लोगों को बता देते, ताकि अगर आप हमें मैसेज करें शामिल प्रोग्राम हो जाए तो आज का सवाल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आज के टॉपिक की बात की जाए तो मेरा सवाल आप लोगों से कुछ यूं होगा कि आप सारे लोग मुझे बताइए। हाँ भाई, हम बहुत सारी ख्वाहिशात कर लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि भाई ये भी हो जाए, काश ये भी हो जाए, काश ये भी हो जाए। और जब ये हम छोटे होते थे, बच्चे होते थे, तो हम ये ख्वाहिश बहुत ज्यादा कर रहे होते थे कि काश पेशेंट हो मी वैसे। हाँ बिल्कुल, यो काश तो हर कहीं पानी जिंदगी में मुखे लगे तो लाजमी कर तो मुखे यू बधायो अगर वो काश तो मुझे पूरो थी वने, यानी कि हाँ पेशेंट जो मी वसे तो तुम केतरा पैसा उतना खड़ा, यानी कि असो यू हों ना बाबा पेशेंट जो मी वसे तो एतरा पैसा खड़ा सी। सो तुखे बुधायो अगर हाँ पेशेंट जो मी वसे तो केतरा पैसा उन मी अमा खड़ा। ठीक है, अगर आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हो, शामिल प्रोग्राम होना चाहते तो ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है नाम, आप सर्च करेंगे आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। वहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। पोस्ट को लाइक किया करें, लाइक करने से ये होता है कि भाई हमारी जो पोस्ट होती है ना वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो अगर आप ही चाहते हैं भाई आके साथ साथ बहुत सारे लोग मजीद हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहें, उनको भी पता चले कि भाई यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम की चर्चे हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप लाजमी लोगों तक हमारी पोस्ट को पहुंचाइए। ठीक है, दोस्तों को भी मेंशन कीजिए, उनको भी पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए अगर पैसों की बारिश हो जाए तो आप उस बारिश में से कितने पैसे उठाएंगे। ठीक है जी, और उसके साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आप लोगों को डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, यानी कि अब तो भाई डबल मजे ही आप लोगों के। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डी स्किन का फेस वॉश हम लगाएंगे, लेकिन क्या भाई क्वालिटीज हैं डी स्किन के फेस वॉश की, तो आप लोगों को मैं बताऊंगी भरपूर पूरे प्रोग्राम में। वो तमाम बातें जो कि जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। कई मरतबा मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनको कख पता नहीं होता अपनी स्किन के बारे में, लेकिन हाँ उनको जो भी प्रोडक्ट बताया जाता है ना वो इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपको बताया जाए उससे पहले आप उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज जान लें। आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें तो ये क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आपकी स्किन सेंसिटिव हो या फिर आप अपने चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट आसानी से नहीं लगा पाते हैं, तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना तो उसके ऊपर वैसे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ऐसे उठाकर सारे प्रोडक्ट्स नहीं लगाने होते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ये चीजें आप जरा उसके अंदर देखा करें कि वो ऑल स्किन टाइप के लिए है या फिर नहीं। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जिक्र आता है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये जनाब मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की यही बात मुझे खास बनाती है डी स्किन को कि भाई ये मेडिकेटेड फार्मूला है जिसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। हर स्किन वाला लोग जो है ना वो आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगा पाएगा, चाहे आप मर्द हज़रात हैं चाहे आप ख़वातीन हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों के लिए तैयार की गई, इस तरह तैयार की गई है कि इसे हर इंसान लगा पाए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत सारी बातें हैं, सारे प्रोग्राम में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं तो बिल्कुल आपके फीडबैक्स की जाने भी आ जाएंगे। आपने बस पोस्ट को लाइक और शेयर जो है ना वो जरा कंटिन्यू रखना है। और एसएनएलई बुक्टी भाई में सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं लाड़काना गोठ रूहल खान बुक्टी खान एसएनएलई बुक्टी असके ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया भाई जान। और फरवा कहती है सलाम अलैकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय आप कैसी हैं, मैं ठीक हूं फरवा, बताएं कैसी हैं। और फहीम शेख हमारे साथ ही लिखते हैं कि विसरे सारो लोग शाला न विसरे तू तो के केडो मु सांढियो आए सा हमें, अस्सलाम अलैकुम ओलेली सलामत अदा छा लाए खुश आयो सफत चा को स्लेट कल मस जी डबी असां भी रुलंदा फिरंदा अची गया सी, प्रोग्राम तो लाजवाब आए हमेशा जी आवांगे, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और फरवा कहती हैं आप ही अर्ज किया है कैसे भुला देते हैं लोग तेरी तेरी खुदाई को, क्या रब मुझे तो तेरा बनाया हुआ एक इंसान भुलाया नहीं जाता। ओके ओके वेरी नाइस। अच्छा चाचा खालिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते बेटा सिडो हाउ आर यू हो फाइन, जी मां सब ठीक है, ताम बताया कि आयो कहते हैं थैंक्स फॉर कमिंग टुडे इन डी स्किन ब्यूटी शो, मैंने तो आना ही था, क्या मतलब मैंने नहीं आना था।
پہلے بہت شکریہ, آپ بھی آ چکے ہیں. اور رشید کوزو بھائی ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام. اور آپ ہمیں حیدرآباد سے سن رہے ہیں, تھینک یو. علی رضا بھائی ہمیں سن رہے ہیں, جی علی رضا بھائی ہمیں دبئی سے سن رہے ہیں, بہت شکریہ, تھینک یو. اور جی فہیم بھائی لکھتے ہیں کہ بھاؤ جیسا فرمائش نہ کرنا سے صفا بھلا بارت ہی آیا آئوں اوئے بابا اوئے سب روز بھلا بارت ہی اچو دیس کی بیوٹی کریم جو استعمال کرنا رہو. اور کہتے کہ میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو ساری جنتیں میرے ساتھ ہو تو جو پاس ہو پھر کیا یہ جہاں تیرے پیار میں ہو جاؤں فنا. واہ واہ واہ واہ. اچھا محمد میرن جکرانی میں سن رہے ہیں, جیکب آباد سے بہت شکریہ. اور آصف علی ہمارے ساتھ کہتے ہیں السلام علیکم. آصف علی قریشی رام نوری آباد, بھاؤ اساں بھی اچھی ویاسی تمام جی پیارے شو میں, ہم آپ اور آپ کی پوری ٹیم کے بڑے. اچھا یعنی کہ آپ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں, میرے خیال میں مجھے بات ذرا سمجھ نہیں آئی. کہتے آپ نے ہمارے سٹی میں اپنا شو اسٹارٹ کیا ہے, ہم آپ کو نوری آباد میں ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ نوری آباد والے بھائی کو ویلکم کہتے ہیں. اقبال آشاری آپ ہمیں سن رہی تھی میرپور خاص سے, آپ کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور مولائی مجاہد بوزار کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نواب اکیلے اکیلے, اچھا آپ آ چکے ہیں اکیلے اکیلے, صحیح کہتے. کیسی ہیں آپ آج؟ اچھا آج فارغ تھا سوچا آپ کا سر کھاؤں. اور سڈور جی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. اور آپ ہمیں سن رہے ٹھوف چوسل سے, اور آپ مجھے بتائیں آپ کے ایریا میں ڈی اسکن بیوٹی کریم مل رہی ہے نہیں, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر ملنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ بس آپ جائیں گے اور پرچیز کر کے آ جائیں گے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو ڈی اسکن فیس واش ہو, یہ دونوں چیزیں آپ کی خوبصورتی کو بڑھا دیں گی. جناب کو جائیے پرچیز کر کے آئیے اور ٹاپک کو ذرا فالو کرتے جائیے. اور یہاں پر ٹائم ہو جاتا ہے ذرا شارٹ کمرشل بریک کی جانب جائیں, اور آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے

0: ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम
2: अमाजे पेंजे शहर सखर आई रोड़ी में
3: जिना अस्पताल कराची जो तरबियती आफ्ता
2: आईटीबी अस्पताल खैरपुर जो मशहूर
3: एलर्जी दमो टीबी फिफड़न आई छाती जे मुख्तलिफ बीमारियन जो माहिर
2: डॉक्टर मोहम्मद नासिर सुमरो
3: चेस्ट स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट
2: माहिर अमराज
3: फिफड़न में ग्यारो फिफड़न में पानी आई फिफड़न में हवा भरजन
2: टीबी नमूनिया आई बारन में छाती जी बीमारी
3: मोटापे जे करे निंड आई साह में तकलीफ
2: सहको दमो सिगरेट नोशी खां निजात
3: बार बार नज़लो जुकाम पुरानी खंगल
2: आई बलगम में रत अचण वगैरह
3: क्लिनिक टाइमिंग्स हर छंछर खां अरबा ताईं शाम 4 खां 7 वगे ताईं डॉक्टर शाहिद मीरानी हॉस्पिटल तीर चौक बैराज रोड सखर घेरा अस्पताल जे वेझो
2: हर खमीस आई आचर ते
3: इंडस अस्पताल घोटकी में
2: मंझंद 1 खां शाम 6 वगे ताईं
3: इन खां अलावा रोजानो सुबुह जो 9 वगे खां मंझंद 1 वगे ताईं
2: तालका अस्पताल रोड़ी में मरीजन जो मुफ्त मुआइनो कंदा
3: डॉक्टर मोहम्मद नासिर सुमरो
2: राबते जे लाइ
3: 0 3 11 390 27 81
4: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत और जवाबित लागू हैं
5: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती
6: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ
7: कंट्रोल फ्रेम 210210 मूव करेंगे
5: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है Emergency Rescue 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी खिदमत में सबसे आगे सिंध
8: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी खाने पहिजी स्किन के लियो एक नव गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थन वती का आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
9: छा तवा जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन तपई तवा लाए आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन अ सेशन लाए दाखलाओ जारी हैं 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD 5 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV CMW CNA खास सहूलतों स्कॉलरशिप्स मौजूद बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री जरे त DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखला फीस आई फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया हिते तवा के मिलंदा एयर कंडीशनड क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज मुकम्मल लाइब्रेरी तजुर्बेकार फैकल्टी हॉस्टल पिक एंड ड्रॉप आई फिजियोथेरेपी OPD जी बेहतरीन सहूलत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा आई पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे याद रखो सीट्स महदूद आहिन तह करे पंजे रोशन मुस्तकबिल लाए अडवी दाखला वठो एक खास गाल इते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सेस OT हेल्थ टेक्नीशियन एमबीए सब कोर्सेस पिण थिंदा आहिन एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबतो 0711563564 2 0310 81 66

0: 111।
1: क्या आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हो, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक, बिजनेस के प्रमोशन, जॉब वैकेंसीज, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, स्पेशल ऑफर्स, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन, GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर। अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच, बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे। एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 03009319667।
2: सखर और गिरदोनवा की गरीब आवाम के लिए खुशखबरी, आंखों का मुफ्त इलाज उनकी दहलीज पर। मुर्शिद सगोरा बाबा शेख भजन साहब की 92वीं सालगिरह की खुशी में आंखों का मुफ्त कैंप, जहां मिले तमाम मरीजों को मुफ्त चेकअप, मुफ्त ट्रीटमेंट, मुफ्त दवाएं, मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त ऐनकें, सब कुछ मुफ्त। बस खिदमत का मौका दें। याद रहे 16 सितंबर बरोज बुध सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल और बालाई सिंह के मशहूर आंखों की बीमारी के माहिर डॉक्टर ओम प्रकाश मंगलानी आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। एड्रेस हिंदू पंचायत अस्पताल, म्यानी रोड, सखर। राबता 03331257106, 03331341417 और 03003123267।
3: यार मचा क्या किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक का दवाई नहीं थी।
4: छो भला साथ वा तुखे साफ साफ बुधा मसलो छाए।
3: यार हिक मसलो हुजे त बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगल है, न भूख सही लगे थी, आई जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पैर सुन थी वन था, आई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही नाया।
4: यार तुझा घणा न, बस हिक ही मसलो आ।
3: हिक इहो किए?
4: हाँ तुझो मैदो खराब आ, छा तो न बुधो आ, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न होंदो त भुख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो आई न ताकत मिलंदी।
3: तो पो मा छा कया?
4: सोलो हला है, इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स, हे कुदरती जुजन मा तैयार कैल कोर्स, तुझे जिस्म जो हिस्सो बन जी, तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो आई मजबूत करे छरींदो, भुख खुली वेंदई, खादो सुठे नमूने हजम थींदई, पेट भूख जण खत्म, सुस्ती खत्म, जिस्म में ताकत ईंदई।
3: वाह यार वाह जी, गाल बुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएमएटी नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली मोरियाबाद और जनाब लाड़खाना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, हमेशा खूबसूरत बनना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए तैयार की गई है। और इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते जाइए। अच्छा, तो यहाँ पर आते हैं जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जाना आप लोगों के लिए जरूरी बात बन जाती है। मैं वैसे भी आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट का इंतखाब करें तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, पहचान लीजिए कि वो प्रोडक्ट आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई आप लोगों के लिए तैयार की गई है, ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है। और मेडिकेटेड फार्मूला मतलब इसे तैयार किया गया है स्किन से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल उन्होंने बनाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स है, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, फॉलिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें मिलकर जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार कर चुके हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी स्किन सेंसिटिव है, कोई भी प्रोडक्ट जल्दी से सूट नहीं करता, तो क्या हम लगा सकते हैं? बिल्कुल जी, आप भी लगा सकते हैं, सारे लोग ही लगा सकते हैं। चाहे आप मर्द हसरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर तरह की स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ साथ एक और बात भी आप लोगों को बताते चले, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो विटामिन ई बीड्स और माइक्रोबीट्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, तो ये जो चीजें हैं यानी कि विटामिन ई बीड्स और माइक्रोबीट्स, ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर ऐड की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। यस, उन्हीं में से एक है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालकात में भी मिलने वाला प्रोडक्ट है। तो बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो विटामिन ई बीड्स और माइक्रोबीट्स फार्मुलेशन है, ये जनाब ऐसा है कि स्किन के अंदर काम करते हैं। जैसा आपने देखा होगा बहुत सी खवातीन को जो कि भाई बड़े महंगे महंगे फेशियल्स करा के आती, और महंगे महंगे फेशियल्स कराने के बाद जो उनको अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है बहुत सारे पैसे देने के बाद, बहुत सारा वक्त देने के बाद, तो बिल्कुल विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स जो है ये वैसा ही काम आपकी स्किन के ऊपर करने वाले हैं। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि ये आपके चेहरे पर फेशियल का निखार देने वाली एक नाइट क्रीम है। यानी कि अब ऐसा वाला सीन हो जाएगा कि आपकी खूबसूरती जो है ना वो बढ़ती रहेगी, आपके पैसे भी थोड़े कम खर्च होंगे और आपका टाइम भी बचता रहेगा। बिल्कुल ही मुनासिब सी कीमतों में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो इसे मुझे ये लगता है कि फायदा उठाना चाहिए। और फायदा उठाइए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 2 रातें अगर आप इस्तेमाल करते हैं मुकम्मल, तो आपके चेहरे पर अच्छे खासे रिजल्ट्स आपको नजर आना स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मर्द हजरात तीन हर कोई आराम से इस्तेमाल कर सकता है, तो इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरती का ख्याल रखते रहिए। वैसे भी अगर आप अपनी खूबसूरती को सही वाले प्रोडक्ट नहीं देंगे, अपने चेहरे को नहीं पहचानेंगे कि भैया के चेहरे को किस चीज की नीड है, तो आपको सही वाला हुसन कैसे मिलेगा? तो अगर आप भी परेशान हैं, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है ना, जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ मैंने बताया कि डी स्किन फेस वॉश भी मार्केट में इन हो चुका है। तो डी स्किन का अगर फेस वॉश यूज करना चाहते हैं, क्योंकि कई मरतबा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम क्रीम नहीं लगाते हैं, चलिए अगर आप क्रीम नहीं लगाते हैं तो आप डी स्किन का फेस वॉश जरा ट्राई करके देखिए। और फेस वॉश की क्या ही बात बताऊं, इतना जबरदस्त है, इतना प्रीमियम क्वालिटी का है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिद्रा इतना क्यों बताते हैं। बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है और आपकी स्किन को क्लीन करता है। तो डीपली क्लीन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी स्किन होनी चाहिए, तो डी स्किन फेस वॉश का यूज तो बनता ही है। और डी स्किन का फेस वॉश जो है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है, तो इसे मैं चाह रही हूँ कि आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, चाहे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं, डी स्किन फेस वॉश लगाएं, भाई हर तरह से आपकी खूबसूरती आपको वेलकम कर रही है, तो आप भी जरा अपनी खूबसूरती को वेलकम कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश का यूज करते जाइए। अच्छा, बहुत से लोग इस चीज को लेकर परेशान होते हैं कि भाई
हमारे एरिया में तो मिल नहीं रहे हैं प्रोडक्ट, तो हम क्या करें भाई? आपके अगर एरिया में नहीं मिल रहे प्रोडक्ट तो आप घबराते क्यों हैं? आपको जो नंबर बताऊंगी ना, बस उन नंबर्स के ऊपर आपने रابطہ करना होता है, और जैसे ही आप रابطہ करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो जल्दी से डायल कीजिए 03125025907। बड़ी 312 50 25 970। आई मेरा नंबर आहे 03273834309। बड़ी 332 73 84 309। ये नंबर साइन जी की तरह डायल करी पांच करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सको आसानी आ बाबा तमाम जिला तमाम जिला मार्केट में एड़ा भला भला प्रोडक्ट्स अची वया है वन्यो वठी छो आई पांच खूबसूरती जो ख्याल रखो उन के अलावा मामा का सवाल पूछो आज के प्रोग्राम में तो तमाम मुखे बुधायो पया फर्ज कयो कि नंढपण में असा चंदा सी अल्लाह साईं पैसन जो मी वसा तो बिल्कुल अगर आज आप ऐसा मुझे मतलब बताइए कि हाँ जी आज अगर पैसों की बारिश हो जाए तो आप उस बारिश में से कितने पैसे उठाने वाले हैं? हाँ जी ये बात मुझे बताइए। और साथ साथ आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो फेसबुक वाली जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, पोस्ट को जरा ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें। ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को लाइक और शेयर करने से ये फायदा होता है कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है ना वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा, बहुत सारे लोगों को हम ये बता पाएंगे कि आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश यूज कीजिए और खूबसूरत हो जाइए। नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए। मुझे जरूर बताया करें कि कहां कहां पर अवेलेबल कराने अभी बाकी हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर जगह अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन हां अगर आपका सिटी आपका गांव रहता है तो क्यों रह रहा है भाई? नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए, अवेलेबल कराइए और खूबसूरत हो जाइए।

वैसे आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी फीडबैक्स की जानब आ जाते हैं, कौन सी बातें चल रही हैं, देखें तो जरा। अच्छा, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। यहाँ पर एस एन आर वाणी हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम मदर। ओ माय फेवरेट आरजे मेरा मुस्कान जी, कैसी हैं आप? मैं भी आ गया, वेलकम, आपको भी वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। सालार सिकंदर हमारे साथ मौजूद है, सालार सिकंदर आपको खुश आमदीद कहा जाता है। आसिम भाई कहते हैं कि भाऊ गानों तो बुधाए जो बबई तव्हां कसीदो फरमाइश कयो आहे, कसीदो सां प्रोग्राम जे स्टार्टिंग में लॻाईंदा आहियो, सो सुभाणे तव्हां जे लाइ हलाईंदासीं, ठीकु आहे। और कहते कि भाऊ पैसों की बारिश किस इलाके में होगी, हर जगह ही होने वाली है। तैयारी पकड़िए जरा आप। अच्छा, मौलाई मुजाहिद बहुत ज्यादा लिखते हैं कि टॉपिक, अगर पैसों की बारिश हो तो मैं जब तक पैसों की बरसात बंद ना हो तब तक उठाता रहूंगा और बाद में गिन के बताऊंगा। ओके ओके, वैसे लॉजिकल बात है। अच्छा, चाचा खालिद कहते हैं कि मैं पैसों की बारिश से बस इतने पैसे उठाऊंगा जिससे मैं, अच्छा सही बात है भाई, अच्छी बात है। और यहाँ पर किशोर भाई कहते हैं कि सलाम अदा स्मार्ट आयोवा, बस चाहे पानी जो इंतजाम कर, बाकी आ फुल आया। वो भी पिए चू। मजाक बिल्कुल ताहे, चाय प्यारी दासी, बबा थदो भी प्यारी दासी। अच्छा, उनके अलावा साजिद अली कहते हैं संजी रानी सबकी, हाँ जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? साजिद भाईजान प्रोग्राम सुन रहे हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं।

नर्दिदुल हमारे साथ ही। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। प्रोग्राम में आपको भी वेलकम कहा जाता है। कहती हैं कि कामयाब शख्स के पीछे नफरत करने वालों की एक लंबी कतारें होते हैं। लोगों को हमेशा खुद से बेहतर लोग जहर लगते हैं। सही कहा आपने। परवा कहती हैं कि टॉपिक आप और मैं पैसे हाफ हाफ करेंगे। अच्छा, उठाएंगे कितना ये तो बताएं। अच्छा, नसीम भाई कहते हैं कि विलेज अलीबख्श जाखरो नूरियाबाद का नसीम जाखरो असी नूरियाबाद द्वारा तमाम जो शो रोज बुधना आयो शोक सा। थैंक यू जी तांजो मोहब्बतू आन तां प्रोग्राम के पसंद कंदा आयो। पर नूरियाबाद में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी कोन? यो तमोके हाल अहिवाल दियो। सिर्फ प्रोग्राम बुधो था या डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो था? अच्छा, हजार भाई भी प्रोग्राम में आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम हजार भाई, ठीक ठाक है? कहाँ गायब हो चुके थे? ओके जी, आसिफ भाई भी हमें नूरियाबाद से सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हजार भाई कहते हैं आज अपनी पसंद का कोई AI सॉन्ग प्ले करना। ओके डन। अच्छा, हिदायतुल्लाह लिखते हैं कि सलाम कैसी हो, मेरा दोस्त मुख्तियार भी आपका शो सुन रहा है। ये सहरा तू चलाना। अच्छा, मैं ठीक हूँ, ॾिसां थी। बिल्कुल तव्हांजी पसंद हलाईंदा सी। और जावेद अली कहते हैं गोठ मोहम्मद उस्मान शंबानी खां नजफ अली शंबानी। ओके जी, भाई को वेलकम कहते हैं। और किशोर भाई कहते हैं अदा कल खां आउं ॾिसां पियो जे लाइव ते अचां थो। लाइव बंद तो थी वञे, कमेंट हितां वञनि पिया तो वटि अचनि न पिया। छा मसलो आहे? न न, कमेंट तव्हांजा बिल्कुल प्रोपर मूं वटि अचनि पिया, रीड बि थियनि पिया। तव्हां ॾिसी वठो तव्हां वटि कोई मसलो हूंदो शायदि। कहते हैं कल शाम बि हिकिड़ो कॉमेंट बि रीड कोन थियो। थिया हुआ बाबा, मूं पाण कया हुआ। शेयर करती रही हूँ। मैंने आज आप लोगों से पूछा है कि अगर फर्ज कर लीजिए पैसों की बारिश हो जाए तो आप कितने पैसे उठाने वाले हैं? ओके जी, टॉपिक को फॉलो कीजिए। दोस्तों के साथ जरा हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए, क्योंकि शेयरिंग इज कैरिंग होती है। जितना आप शेयर करेंगे पोस्ट को, उतने सारे लोगों को हम बता पाएंगे कि आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो कि भैया की स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं। और इसी के साथ साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करते हैं ना, तो इसके ऊपर भी आप लोगों को डॉक्टर औरत का फोटो नजर आएगा या निशानी आए। निशानी के तौर पर तुम समझी वो, अगर तुम दुकानदार वट वनो था उनके चो भाऊ डी स्किन ब्यूटी क्रीम दे तांगे का बी क्रीम पकड़ाए सड़े, तुम्हें खबर न हो जाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम आए कि सैया। तुम्हें खबर हो जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के मथा डॉक्टर माई जो फोटो अव सैया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम यहाँ निशानी ऐसी वही सो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम से गड डी स्किन जो फेस वॉश भी लाजमी वो बई चीजों गड इस्तेमाल करके खूबसूरती मिले मुकम्मल तरीके से।

हाँ जी, कभी कभी वाकई में चीजें भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता हो सकता है, वैसे मैं खुद ही सोच रही थी पीछे किए थे या नहीं किए थे। चले बहुत शुक्रिया। अच्छा गाना सुन रही, बहुत ही खूबसूरत सा। बिल्कुल, कोशिश किया करें प्रोग्राम में, अगर आप मुझे फरमाइश करें गाना ऐसा होना चाहिए जो प्रोग्राम में चलने जैसा होना चाहिए, यानी कि कई मरतबा आप ऐसी फरमाइश करते थे, थोड़ा सा मरा हुआ गाना होता है तो जिंदा जिंदा गानों की फरमाइश किया करें। अच्छा इरम भी हमारा शो सुन रही है, इरम थैंक यू वेरी मच, बस दुआ कीजिएगा। जाकिर अहमद हमारे साथ है, जाकिर अहमद भाई आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया के साथ। गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ है, तमाम जो शो वेरी नाइस आहे, सॉन्ग बुधराए जो शमन जो, बिल्कुल शमन जी गाने जी फरमाइश तांजी पूरी कदा सी। अच्छा अच्छा खाले तमाम भी पैनल से मौजूद है, तमाम भी गाने जी फरमाइश कही, आप सो कहो गानों फरमाइश करो थे, कहते हैं कि आप आती हैं तो शो करने टाइम अच्छा पास हो जाता है, बाकी दो दिन से आपने अपनी परंपरा नहीं निभाई बस मैं जरा सैडी गाने सुनकर बड़ी बेजार हो चुकी हूँ, तो जरा आप अपनी चॉइस को चेंज कीजिए। अताउल्ला मरी हमारे साथ ही विलेज रमजान मरी मीरपुर खास से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। मीरपुर खास में हर जगह डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो जाइएगा और परचेज करके आइएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी मुझे जरा बताइए, ताकि मुझे पता चले कि कितने सारे प्यारे प्यारे लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही मीरपुर खास से कहते हैं कि डी स्किन अच्छी क्रीम है, मेरी फैमिली इस्तेमाल करती है, ये देखें भाई। अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। वैसे अब डी स्किन का फेस वॉश भी मार्केट में आ चुका है, तो वो भी ट्राई करके देखिए।

उसी बलूचिस्तान से कहते हैं कि किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो, अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो जरूरत का पुजारी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा मीना, वाकई इस स्किन के बारे में पढ़ पढ़ के और जान जान के इतनी तो नॉलेज हो चुकी है कि अगर मैं इस स्किन की डॉक्टर बन जाऊं तो आराम से बन सकती हूँ। हाँ जी, मुझे बड़ी नॉलेज हो चुकी है। तो बिल्कुल आप देश स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा स्मार्ट भाई लिखते हैं कि टॉपिक आप सिर्फ इतरो पैसो कनंदस जेतरो अंबानी वटा है, बस बस इतरो बस तई टच। चलें क्या बात, गाना एंजॉय कीजिए। और यहाँ टाइम हो चुका है, जरा न्यूज ब्रेक की जाने जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे। वापसी जल्दी आप लोगों के पास, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

वज़ीर आज़म मुल्की बरामदी अमल के तेज आसान ए शफाफ बनाने की हिदायत कर छी। बरामदी सनत ला जदीद टेक्नोलॉजी तहकीक जिदत के हथी डेण जो हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत हेठ मुल्की बरामद वधाइण ए मुआशी तरक्की के तेज करण बाबत इजलास। शहबाज शरीफ चया त बरामद में वधीक मुल्की मईशत तरक्की जो बुनियाद बणायो। रवायती शोबन सां गॾु ॿियनि शोबन खे बि आलमी मंडी में बरामद लाइ तयार कयो पियो वञे। रंडकूं ख़तम कयूं वञनि।

0: अमेरिका ईरान सां जारी जंग में 18 फौजियुनि जे मारजण ऐं 417 ज़ख़्मी थियण जी तसदीक करे छॾी। 18 जंगी जहाज़ ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो एतिराफ़। 30 ड्रोन बि तबाह ऐं हथियारनि जे ज़खीरे में बि घटिताई थियण जो एतिराफ़ करे छॾियो। ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जे कांग्रेस पारां तयार कयल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट मूजिबि ईरान सां जंग सबबु अमेरिका जे हथियारनि वारे ज़खीरे में घटिताई थी आहे, जंहिंजी बहालीअ में रंडकूं आहिनि। हथियारनि में वाधि लाइ घणो वक़्तु लॻी सघे थो। ईरानी हमलनि जे नतीजे में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई, इराक, ओमान ऐं उर्दन में मौजूद अमेरिकी अॾनि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो आहे। जंगी जहाज़नि ऐं हेलीकॉप्टर जो बि वॾो नुक़सान थियो आहे।
1: आबन अरुम जी सूरत हाल हाणे तब्दील थी चुकी आहे। ईरान जा शर्त क़बूल करण ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार मोहसिन रज़ई चयो आहे त अमरीकी सदर कॾहिं चवे थो ॻाल्हियूं न थींदियूं ऐं कॾहिं ॻाल्हियुनि लाइ तयार हुजण जा बयान ॾिए थो। संदसि बयाननि ते कंहिंखे गुमराह न थियणु घुर्जे।
0: लुबनानी घरो वज़ीर जे घरो वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ात। ॿिन तरफ़नि लाॻापन समेत खिते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाननि जो मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। लुबनानी घरो वज़ीर खे घरो वज़ारत जी आफ़ीस पहुचण ते सलामी बि ॾिनी वई।
1: आईन में अख़्तियार ऐं हदूं वाज़े थियल आहिनि। अख़्तियारनि जे इस्तेमाल में आईन खे हर सूरत में मथां रखणु घुर्जे। वफ़ाक़ी आईनी अदालत जे चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त आईन ते अमल करे मुआशिरे में इस्तेहकाम आणे सघे थो। नई अदालती साल में इंसाफ़ जी फराहमीअ वारो अज़म मर्जायूं था।

तय कंबर में 18 सितंबर का पीपल्स बस सर्विस जा नवा रूट शुरू करने जो ऐलान सीनियर सूबाई वजीर शर्जी लीला मेमन की सदारत है ट्रांसपोर्ट एंड बस ट्रांसिट बाबत इजलास में पुखास में औरतन लाए पिंक स्कूटी जी विर्स बाबत अग भराई जो भी जायजो वरतो वो शर्जी लीला मेमन है तो हुकूमत शहरों के जदीद ए महफूज ट्रांसपोर्ट फराहम करने कदम खड़ी रही है पीपल्स बस सर्विस के सिंध के बेन शहर जिले तीन वो वे।

0: जे गैर कानूनी अलॉटमेंट वारे केस जे एहतसाब अदालत में ॿुधणी वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿिया पेश न थिया। एहतसाब अदालत वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿियनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। समूरनि जवाबदारनि खे 1 अक्टूबर ते तलब करे वरितो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM 88 की आवाज।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अवां जो गाड़ी खरीद करण जो इरादो आहे
5: या पंहिंजी पुराणी गाड़ी विकणण चाहियो था, त पोइ अचो बालाज मोटर्स मोरो ते,
4: जिते तव्हां खे मिलन थियूं टोयोटा, सुजुकी, होंडा,
5: किया, स्पोर्टेज ऐं ॿियनि कंपनियुनि जूं मुख़्तलिफ़ गाॾियूं, जिन में जापानी इम्पोर्टेड ऐं हाइब्रिड गाॾियूं पिण शामिल आहिनि।
4: तव्हां जी पसंदि, ज़रूरत ऐं बजट मुताबिक़ गाॾी जी चूंड में बहितरीन सहकार।
5: बालाज मोटर्स मोरो ते हर क़िस्म जे गाॾियुनि जी ख़रीद ऐं विकिरो जी सहूलियत मौजूद आहे, मुनासिब अघन ऐं बहितरीन डील सां।
4: इन खां अलावा पूरे पाकिस्तान में अव्हां जिते बि हुजो पंहिंजी गाॾी बुक कराए सघो था।
5: बालाज मोटर्स नस्त गार्डन सिटी, दादू रोड, मोरो। प्रोप्राइटर अली बख्श खासकेली। अॼु ई राबतो करियो 03002963322।
6: तव्हां जो ख़्वाबु आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में हिन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि। 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD, 5 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA।
7: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें होंगी और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में क्यों ना बातें हो, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे जो चल रहे हैं, आप लोगों के थोड़े से खर्चे कराएंगे तो क्या ही हो जाएगा। बिल्कुल जी, पाण थोड़ो खर्च करना गयो बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से कोन मिली रही आहे, त जेको नंबर ॿुधायां थी न, नंबर ते राबितो कयो न, चेंज हलो अथव भला, कॉल कयो या वरी मैसेज कयो के ॿुधायो भाई साहब असांजे एरिया में कोन थी मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो भाई साहब आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल करा देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल आसानी से आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगे। खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए और खूबसूरत बने रहिए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते, तो आप क्यों घबराते हैं, आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी बात, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये जनाब एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला तो इसका मतलब ये है कि भाई इसे हर कोई इंसान जो है वो आराम से इस्तेमाल कर सकता है। और स्किन के डॉक्टर्स ने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है, तो बस गाल ही खत्म थी वही ना बाबा साईं। तो तव्हां जी स्किन अगर सेंसिटिव आहे या फिर कॉम्बिनेशन टाइप आहे केड़ी भी स्किन जी मथां, तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो नालो तव्हांखे खबर हुजणु घुर्जे, अगर तव्हां मार्केट वञो था, परचेज करण वञो था, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम नालो वठी करे तलब कयो, ठीक आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी थोरी अगर निशानी तव्हांखे ॿुधाई वञे, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथां हिकु डॉक्टर माइक जो फोटो अथव, ओ इहा अथव डी स्किन ब्यूटी क्रीम। बिल्कुल ही सुञाणे वञो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथां डॉक्टर माइक जो फोटो आहे, यानी कि डॉक्टर्स मिली करे तयार कई आहे, तॾहिं डॉक्टर माइक जो फोटो आहे, जेका सुहिणी डॉक्टर हुन जो। स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था, डी स्किन तव्हांजी भी खूबसूरती के सफ़ा नेक्स्ट लेवल ते वठी वेंदी। ऐं तव्हांजी खूबसूरती अगर थोरो तव्हांखे परेशान करे रही आहे, तव्हां पहिरियां त खूबसूरत हूंदा हुआ, पर वक़्त जीअं गुज़रे पए तव्हांजी खूबसूरती थोरी डिम थी वई आहे, तव्हांजी स्किन थोरी मतलबु बेजान थी वई आहे, रौनक थी वई आहे, तव्हांजे चहिरे ते जेको निखार आहे, ग्लो आहे, उहो कॾहिं गायब थी वियो आहे, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था। छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल खां फौरन बाद ई तव्हांजी स्किन ते निखार अचणु शुरू थी वेंदो, तव्हांजे चहिरे ते जेके रिंकल्स आहिनि, फ्रिकल्स आहिनि, ब्लैक हेड्स आहिनि, वाइट हेड्स आहिनि, या फिर स्किन डिम थी वई आहे, डल थी वई आहे, त हर मसले जो हल आहे बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ 2 दिनों में वाज़े नतायज आपको देने वाली है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लाजमी इस्तेमाल करके देखिएगा। जदीद अज़ा इसके अंदर एड की गई है, जैसे कि विटामिन ए बीड्स, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन, अल्फार्बुटीन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, ये तमाम चीजें जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर एड की गई, और ये क्रीम रात भर काम करती है आपकी स्किन के ऊपर, आपकी जल को चमकदार बनाने के लिए, डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए, आपके चेहरे पर निखार लाने के लिए, और बहुत सारी जो स्किन होती है ना जिन लोगों की, भाई आपके चेहरे पर जो है ना वो ऐसा होता है कि वक्त से पहले आप बूढ़े नजर आना स्टार्ट हो चुके होते हैं, क्योंकि आपके चेहरे पर काफी ज्यादा रिंकल्स आ चुके होते हैं, तो उन तमाम चीजों से भी आपको महफूज रखने वाली है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके चमकदार बनाने में डी स्किन ब्यूटी क्रीम आज भी पहले नंबर पर है, और आपकी जल्द की साख बेहतर बनाएगी, आपकी स्किन जो है वो आपको एहसास होगा भाई बहुत खूबसूरत होती जा रही है, और स्किन नरम और मुलायम हो जाएगी, सॉफ्ट सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा, और इसके अलावा हर स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, तसल्ली रखिए, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। अगर आप फेस वॉश का यूज करना चाहते हैं, क्योंकि कई मरतबा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सिर्फ फेस वॉश हणदा आहियूं, तो काई मसले जी गाल कोने का, तव्हां फेस वॉश लगाए सघो था। ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अगर गाल कई वञे, तो खूबसूरती और फ्रेश लुक के लिए सिर्फ मेकअप ही काफी नहीं होता, बल्कि आपके दिन का आगाज एक अच्छी स्किन केयर रूटीन के साथ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और हमारी जल्द जो होती है ना, दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, पसीना हो जाता है, या फिर ऑयल जो है वो काफी ज्यादा जमा हो जाता है, या फिर डस्ट पोल्यूशन वगैरह, ये तमाम चीजें आपकी स्किन के अंदर जमा हो जाते हैं, इसलिए आपके चेहरे की सफाई को अपनी रोजमर्रा रूटीन का लाजमी हिस्सा बनाना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उसके लिए आपके पास डी स्किन फेस वॉश मौजूद है, जो आपकी रोजाना स्किन केयर रूटीन में एक बेहतरीन इजाफा ला सकता है। चेहरे को साफ करने के बाद ज्यादा आपको जो है ना स्किन को फ्रेश बनाएगा, साफ सुथरा आपको महसूस होगा, जिससे आपकी पूरी ब्यूटी रूटीन मजीद बेहतर हो जाएगी। तो डी स्किन फेस वॉश जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह हो, शाम हो, या फिर रात के टाइम, तो लाजमी लगाइएगा, और मुनासिब आपके चेहरे को जो है ना वो बेहतर बना देगा, जल्द को देगा ताजगी, और जब
फेस वॉश यूज करने के बाद आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तब तो भाई बात ही बन जाएगी। तो डी स्किन फेस वॉश और डी स्किन ब्यूटी क्रीम दोनों चीजें साथ लगाइए। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, क्लीन बनाता है और मॉइस्चराइज भी रखता है। तो डी स्किन फेस वॉश मार्केट में इन हो चुका है, जाइए लूट लो माल बाबा, परचेज करते जाइए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी कराते जाइए। उसके लिए आपने डायल करना है 03-12-50-25-907। नंबर आहे बड़ी 312 50 25 970। ही नंबर अगर बंद हुए रिसीव न थे तो पोई तमाम बियो नंबर ट्राई करे सको था। आई बियो नंबर आहे 033-27-38-4309। बड़ी 332 73-84-309। ही नंबर साइन तमाम जी आसानी से लाए जी तमाम वन्यो बस पांजे करीबी जनरल स्टोर से नालो वठी तलब कयो आई पांजे खूबसूरती के लिए नो एहसास तो हानी मार्केट में अवेलेबल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश। हाँ बुधायो करें था इस्तेमाल कयो। अच्छा अगर तमाम भी इस्तेमाल कयो पया तो मुखे बुधायो जी अब्दुल्ला भाई बुधायो तो बाबा असानी पूरी फैमिली डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी रही आहे। अगर तमाम लगाया था या तमाम जी फैमिली मां कोई लगाए पयो तो मुखे बुधाईंदा कयो जी मुखे खबर पए किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज थे पयो बाबा। इन खा अलावा अगर तमाम सनी प्रोग्राम में मौजूद आ तो तमाम असा के 888 और फेसबुक ते ज्वाइन करी सको था। फेसबुक ते जेके मानो अस अगर मौजूद आन सबनी जो मोहब्बत हूं बाबा पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना कयो पैसा कोना लगंदा मुफ्त में थी वेंदो। मां जवा का सवाल पूछो आहे मुखे बुधायो अगर फर्ज कयो पैसन जो मी वसे ठीक आ तो तमा केतरा पैसा उन मी मा खणदा। हां जी शो तो इंसान डाटो माशाल्लाह लालची है। अगर असा के मतलब मिली वेंदिया ना एकड़ी चीज जका सा चना काफी टाइम का सा सोची ना तो बाबा ये चीज असा के मिले आई तरी वो चीज असा के मिली वेंदिया उन का पोए वरी असा के अन्ना वडी चीज जी जको ना मतलब ख्वाहिश पैदा थी वेंदिया है। सो वाकी इंसान के तो नाशुकुर आ डाडो लालची है। सो था बुधायो पंज गाल कयो। अच्छा ये गानो हलायो आ मुमताज मलई जी आवाज में फरमाइश हुई बाबा के जी मुमताज मलई जो गानो वठो मुमताज मलई आयो तो आवाज जो भलो गानो गाइंदो। सो आप सुन रहे हैं व्हाइटिश डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

चाचू पुछे पियो माइक्रोबीट्स क्या है बेटा, माइक्रोबीट्स फेशियल जी अंदर एड कया। विंदाइन जी उन फेशियल के सफा भली जो रिजल्ट ला तैयार कर वे माइक्रोबीट्स जो होंगे ना वे तमाम जड़ी ही वीडियो दिसंदा फेसबुक से हले पी तो जे ही गोल्डन कलर जा बीट्स आए ना उन्हें के माइक्रो बीट्स चेबो है ठीक है वही तमाम जी प्रोडक्ट जी जेका मतलब रिजल्ट हुंदा ना वा डबल ट्रिपल करे छडीदा है सो ये डाटा पावरफुल हुंदा है इनन जो इस्तेमाल जेका पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट कन पया जेमे डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल है सो प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट आ बनो बाबा वठी जो और फहीम कहते हैं कि टॉपिक दादा मैं इतने पैसे उठाऊंगा जितने पैसों से मैं एक बड़ी फैक्ट्री खोलूंगा और लाड़काना के सारे चिंची ड्राइवरों को चिंची छीनकर उनको फैक्ट्री में काम दूंगा इो भलो आ इो सुठो मस्त आइडिया और उनका अलावा

अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं सदरा, अब आपने हानिया आमिर का सॉन्ग सुना, मुझे तो मजा नहीं दे रहा था, बस पता नहीं क्या था। और उनके अलावा साजिद भाई कहते हैं दोस्त,

मोहम्मद ताबिश भुट्टो, मोहम्मद बाकिर और शाकिर भुट्टो गाने जामिन जो गानो। अच्छा चलो जामिन जो गानो तव्हां चयो आहे, मां कोशिश कयां थी बिल्कुल हलाईंदासीं। दर्दी दिल कहती है ये नाइस बीजी हे, थैंक यू दर्दी दिल। और उनखां अलावा चाचू चए थो नंढपण में त अञा अवां भी आयो बेटा, हा मुझो अञा बचपन हले थो, सही गाल आहे। और मुजाहिद बोझा लिखते हैं कि सिडो सिंधी में बात करती हो, उर्दू में बात करती हो, थोड़ा बलोची भी।

अर्की लॻाए पियो हथ मथे कयो बाबा ॾिसणु चाहियां थी जेके सोणा माण्हू वेठा आहिनि असांजे प्रोग्राम में डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कनि पिया पोस्ट खे लाइक शेयर कयो कंजूसियूं छाजू आहिनि बाबा किशोर भाई कहते की मूंखे तुंहिंजे शो जी हिकिड़ी ॻाल्हि वणंदी हुई तो कमेंट फौरन रीड कंदो हुई अगरि असां कंहिं गाने जी मश्किरी कंदा हुआसीं त उन टाइम रीड कंदो हुई त मज़ो ईंदो हुयो हा तारीफ़ हिन गाने जी मिले लास्ट में गाने खे त मज़ो न ईंदो न इहा बि ॻाल्हि आहे वैसे सही ॻाल्हि आहे सही था चओ कहते के जे माण्हू जा कॉमेंट मूंखे नज़र नथा अचनि तव्हां अचो करे प्रोग्राम ॿुधो बाबा छा कंदा माण्हू जे कॉमेंट्स खे उहे मां हूअं ई पढ़ां थी त तव्हां बसि ॿुधी वठो ठीकु आहे ॾिसो नज़र ॿुधो ॾिसो तव्हां सिर्फ़ पंहिंजो सिन पंहिंजे आईने में जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु डी स्किन जो फेस वॉश बि अची वियो आहे मार्केट में तव्हां हाणे फेस वॉश बि वठी सघो था ऐं फेस वॉश अगरि तव्हांजे एरिया में नथो मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम पहिरियां खां अवेलेबल आहे त तव्हां हिकिड़ो कमु कयो तव्हांखे जेको नंबर ॿुधायो आहे प्रोग्राम में उन नंबर ते राबितो करे वठो ठीकु आहे जो तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश ॿई मिलनि गुलाम फातिमा हमें सुन रही हैं गुलाम फातिमा चन्ना बिल्किस चन्ना अब्दुल कदीर चन्ना कुरेशी गोट सखर से आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है बहुत शुक्रिया जी रोजाना हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं थैंक यू प्रोग्राम को सुनते रहिए और आपके कुरेशी गोट सखर में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं बताइए तो जरा खबर पवे बाबा न भी मिले थी अगर तो जो नंबर प्रोग्राम में बुधायो वे तो ना इन नंबर से राबो कर वा करो दफो कॉल या फिर मैसेज छी दियो वो पा ही तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराए छी हां जी बार चई वरी बार चई मुझे सुनने को मिलता है या फिर आपको भी ऐसा लगता है अच्छा नसीम गुलाम दीन भाई कहते हैं कि हमने वैसे क्रीम कभी यूज नहीं की लेकिन आपने बोला हमने यूज की डी क्रीम डी स्किन ब्यूटी क्रीम अब दिल करता है क्रीम को छोड़ू ही नहीं ॾिसो ॾिसो इहो कमाल अथव डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो अगर तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त पोइ बिल्कुल ई नसीम भाई वांगुरु चवंदा त हाणे असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे कोन छॾे सघंदासीं छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾाढी भली क्रीम आहे

इच्छा था बुजुर्ग नाज जो गानो आहे तोई मुखे प्यारो सब खां बाकी बियो कुछ नाए घुरियो रब खां अलाए इहे हुयो शायद पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमाल कजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वञो बाबा दुकानदार खां घुरो से इन खे चओस अदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराए अगरि नथी मिले त ईअं बि थींदो आहे दुकानदार वटि तव्हां वेंदा दुकानदार खे चवंदा अदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾे हू अगरि न हूंदी हुन वटि त का ॿी क्रीम तव्हांखे ॾेई छॾींदो ऐं चूनो लॻाईंदो त बाबा ही हले वठी अॼुकल्ह ॾाढो भलो रिज़ल्ट अथव हे हो तव्हां हुनखे चओ भाउ हाणे ॻाल्हि अथई सिधी डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराए पोइ वठणु ईंदो मां बाक़ी ॿी क्रीम कोन वठी वेंदो मां सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नालो ई काफ़ी आहे बाबा

0: मां छा क्या किथे वन्या घर में वेठो आहा पर ठीक ही नया शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई ना ही थई
1: छो भला छा छो तोखे साफ साफ बुधा मसलो छाए
0: यार एक मसलो होजे त बुधाया मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे न भूख सही लगे थी आई जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पेर सुन थी वन था आई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी कह कम जो रहंदो ही ना या
1: यार तुजा घणा न बस एक ही मसलो आ
0: एक इहो की है
1: हां तुजो मैं तो खराब आ छा तो न बुधवा मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न होंदो त भूख भी न लगंदी न हाजमो थिंदो आई न ताकत मिलंदी
0: त पो मां छा कया
1: सोलो हला है इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स एक कुदरती जुजन मां तैयार कैल कोर्स तुजे जिस्म जो हिस्सो बन जी तुजे मैदे के बिल्कुल ताजो आई मजबूत करे छरिंदो भूख खुली वेंदी खादो सुठे नमूने हजम थिंदी पेट भूख जण खत्म सुस्ती खत्म जिस्म में ताकत ईंदी
0: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी पर ये किथे मिलंदो
1: यो मिलंदी बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी आई राबते जे लाए नंबर भी अथई 0305-58-00-616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त छा तवा जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजण तपोई तवा लाए आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिलाऊं जारी आहिन चार सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM पंज सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD बिन सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV CMW CNA खास सहूलतूं स्कॉलरशिप्स मौजूद बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री जरे त DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखिला फीस आई फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया हिते तवा के मिलंदा एयर कंडीशनड क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज मुकमल लाइब्रेरी तजुर्बेकार फैकल्टी हॉस्टल पिक एंड ड्रॉप आई फिजियोथेरेपी OPD जी बेहतरीन सहूलत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा आई पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे याद रखो सीट्स महदूद आहिन तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस OT हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबितो 07115635642 ऐं 03108166111
2: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: 44 सालन जो तजुर्बो हजारे मरीजन जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद 44 सालन जे वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज जोड़न जो सूर मैदे में जलन गैस बदहजमी तेजाबियत गुर्दन जी पथरी बवासीर बे औलादी वारन जो किरण गंजपण फॉलेज खारिश ऐं बियन मुख़्तलिफ़ सेहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसर इलाज फराम करे रहा आहिनि आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर पुलिस हेडक्वार्टर चौक पुलिस लाइन सखर टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबुह 10 खां शाम 5 ताईं अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राबितो करियो 03-26-22-00-440
4: खुशखबरी हदन जे मुख्तलिफ बीमारियुनि में मुब्तला कंदरा ऐं पसगिरदाईअ में रहण वारनि शहरनि जे लाइ खुशखबरी हिकु रोज़ा मुफ़्त मेडिकल कैंप जंहिं में जिना हस्पताल कराचीअ जो मशहूरु मारूफ़ हदन जी बीमारियुनि जो माहिर सर्जन डॉक्टर मोहम्मद उमर मरीज़नि जो मुफ़्त मुआइनो कंदो तारीख़ 19 सेप्टेम्बर छंछरु जे ॾींहुं सुबुह 10 खां मंझंदि 3 ताईं हदन जी बीमारियुनि में मुब्तला मरीज़ हदन ऐं जोड़नि जे सूर चेल ऐं कुनरग जो सूर हदन जी टीबी ऐं कैंसर ॿारनि में हॾियुनि जा मसाला शुगर जे मरीज़नि में ज़ख़्म जो न भरिजण ऐं हॾियुनि में मुब्तला मरीज़नि जो स्पेशल चेकअप कयो वेंदो त देर छा जी हिन मुफ़्त मेडिकल कैंप मां फ़ाइदो हासिल करियो एड्रेस डॉक्टर भागचंद शिफ़ा डी केयर क्लिनिक मेन रोड कंधरा राबितो 0633-71-2326
5: آپ اپنا پیغام ہزاروں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, چاہے اسکول, کالج, یونیورسٹی کے ایڈمیشنز ہوں, کسی ہاسپٹل یا کلینک, بزنس کے پروموشن, جاب ویکنسیز, پبلک اناؤنسمنٹس, ایونٹس, سیمینارز, اسپیشل آفرز, اسپانسرڈ پروگرامز, لائیو مینشنز اور کسٹمائز پروموشنل کیمپینز یا کسی بھی قسم کے ایڈورٹائزنگ کیمپین, جی ایف ایم ہے آپ کا بھروسے مند میڈیا پارٹنر. اپنی ایڈورٹائزنگ کو دیجیے زیادہ ریچ, بہتر امپیکٹ اور مؤثر نتیجے. ایڈورٹائزنگ اور بکنگ کے لیے آج ہی رابطہ کریں اسٹیشن مینیجر بابر شیخ 03009319667.
6: جس کی تعمیر پر ہوتی ہے واہ واہ,
7: مزار ہے وہ میر معصوم شاہ کا,
6: شہر پر کرتا ہے راج,
7: نرالا ہے سکھر بیراج, ایوب برج بھی ایک شاہکار ہے,
6: الگ ہی یہاں کا شاہی بازار ہے,
7: رنگ برنگے ہیں.

0: मोहम्मद की आवाज
1: कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई कहां से अवेलेबल कराएंगे या फिर कहां अवेलेबल होने चाहिए, कहां कहां पर ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं. ये तमाम बातें जो कि आप उनसे पूछ सकते हैं आराम से. तो मैसेज कीजिए या फिर उन्हें कॉल कीजिए और बताइए आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, या फिर अगर डी स्किन का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं. अच्छा, तो जल्दी से डायल कीजिए 033-27-38-43-09 बुड़ी 300 73-84-390. आई यो नंबर आहे 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50-25-970.

भाई मोर नाडो भलो नालो आए सुना मैं भी जोर रहा वरी मोर भी अच्छी बात है चले नंबर के ऊपर राता कीजिए अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराइए इस्तेमाल करते जाइए खूबसूरत होते जाइए। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद हैं जी मिर्पू खासी अब्दुल्ला महर के लिए अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है बहुत शुक्रिया कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी बड़ी जबरदस्त है बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और ये हमारे साथ शहजाद अली राजपर नंडड़ो जमीर अली राजपर फ्राम बसीरो अदी सिदरा पेसन जी बारिश अच्छे पो मजा डिस जहाँ साझा ये नवाना हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मकसूद मला कहते मेरापुर खां हेलो सिद्रा मुस्कान हाँ जी मुझे मास्टर मजूर का गाना सुनाना। अच्छा तान थोड़ो लेट आया हो पर शायद मैं तां जो मैसेज लेट पढ़ियो आई दिसा थी अगर टाइम बची तो तां जी पसंद जो गानो हलाए वठंदा ठीक है न त सुभाणी बुधी वठंदा सी। और ये हमारे साथ ही आपकी पूरे नेटवर्क को सलाम कबूल हो शुक्रिया 78 मोरी मीरपुर खास से राजा हमीरचंद है किशोर कुमार हीरा लाल सुरेश और सुरेश इजी लोड वालो सही और अतिका क्यानी का मरवाड़ी था जो अच्छा तां मरवाड़ी में मैसेज लिखियो बाबा एतरी मौके नहीं दिया जेतरो तां मैसेज में लिखियो सो थैंक यू तां जो मोहब्बत हुआ तां प्रोग्राम

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना सुन रहे हो। यहाँ पर फजली हमारे साथ मौजूद है, कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्य सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो डियर। सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। सॉन्ग अच्छे प्ले करो जानू, नो सैड, ओके ओके, सैड गाने नहीं लगाएंगे आगे से, ऐसा भी हो वचन वर्त हुआ। और कहती है चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करती रहिएगा।

अभी बात मुझे समझ आई। वही वही बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझे। और डे स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रही तो हमारे साथ जरा शेयर किया करें, शेयरिंग इज केयरिंग होती है। मुझे कन्ना में बुधाई सरीन आ गया था, बाजी असा डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगायूं था यार, असा डे स्किन जो फेस वॉश लगायूं था यार, असा इरादो कयो आए छो त हां इरादो भी तां करे सको था, इरादो को ना तरे त वनी वठी ना ना। सो इरादो कयो बाबा, डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो तांजी खूबसूरती के सफा ये वीआईपी बनाए छडींदी, आई तांजी चेहरे ते चार चंड लगाए छडींदी। सो डे स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डे स्किन जो फेस वॉश अडी वनो पांजे करीबी जनरल स्टोर अवेलेबल करायो आई वठी अचो।

अच्छा फहीम भाई कहते हैं भाऊ यो राणल जो धूल केड़ो आए हां राणल का पूछनो पंदो मुखा चाथा पूछो मां न राणल के सुनाना न धूल के और अदो कहते हैं कि ही गानो आ बचपन का शादन में बुधा पे बाबा पुरानो गानो आहे आई सब बचपन का बुधंदा अचन था कहते वैसे भैया आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगानी चाहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा ठीक है। और अखलाक भाई कहते हैं कि यो केंजी शादी जो सेरो वा यो बाबा बस शादी केंजी भी कोनी ऐसा मरे यो हलाई से दुआ है वैसे फरमाश ने गाने जी हुई सो ये उन्हें देखे डेडिकेट आए पर ये मरे बुधुंदा शादी कोने का छड़ा जाके छोकरा ना वैसे ही चंदन शादी करो गानो वाला मतलब वो चंदन कदे तो थींदी सो सा फील वटी बैठो मायरा कहती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपने यूज करी और आपको बड़ी अच्छी लगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम की आप बात है जी बहुत बढ़िया डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाकई अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप भी यही कहेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेड़ो कोई भी कोने बाबा छो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मेडिकेटेड फार्मूलो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 क्रीम है यानी कि ही नाइट क्रीम था पर ही जदी तां इस्तेमाल कंदा त तवां के फेशियल वारो रिजल्ट मिली सके थो सो अगर तां भी चाहता त बाबा पैसा भी लाइक खर्च न थे ऐं असां के मुनासिब कीमतन में भलो प्रोडक्ट मिली वने असां जो टाइम भी बची वने तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो सफा परफेक्ट प्रोडक्ट आए तमाम सबनी मानन जलाए आई तमाम जी स्किन के सफा वीआईपी बनाए छदी तो तमाम जी सेरे जे जेके प्रॉब्लम्स आन सबनी के खत्म करो आई तमाम गोरा चिट्टा प्यारा प्यारा थी वेदा सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आए डी स्किन फेस वॉश आए तमाम जी स्किन के अगर जी खूबसूरती डियन चाहियो था तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई डी स्किन फेस वॉश पांजे चेहरे के गिफ्ट करे छियो हां जी अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अपने आप को जरा गिफ्ट कीजिए हां जी कदी कदी पांजो पान के तोहफो डियन भी डाडो जरूरी होदो आए वरी अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई डी स्किन जो फेस वॉश पान के तोहफो दे जे तो बहुत वाह वाह वाह थी वेदी अच्छा हजार बार चाहे कोई पांजे पसंद जो एआई वारो गानो बुधाए तो ही वारो गानो अच्छा तो बुधुंदा

अच्छा नागर शहर हमें गोरकी से सुन रहे हैं, ये वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा कॉपी वालों गानों बुदो सी जो तुझा बार बार कॉपी हुए ना होना हुक्का बार बार कॉपी वालों गानों ना लाए थी सके तो। अच्छा हजार भाई थैंक यू सो मच तुम से गड आए और फरवा तुम्हें सजो प्रोग्राम पसंद आए सो थैंक यू

आंटी तेरे प्यार में दिल ये नाचे रे, डेज स्किन ब्यूटी क्रीम की बात हो रही है, डेज स्किन ब्यूटी क्रीम के प्यार की बात हो रही है। ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें तो हमारे साथ जरा शेयर किया करें, और इसके अलावा पोस्ट को लाइक और शेयर करें। हाँ जी, पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें, इससे ये होता है कि भाई मोहब्बतें बढ़ती है, और ये मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, दोनों तरफ से निभाई जाती है। तो अगर मैं आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताती हूँ, तो आप बदले में पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है।

राधु से तो आजकल लोग हमें पहले इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं. लगी ये तो सोड़ो जमाना चुका ना थोड़ा बहुत होती वही हुआ है. पहले जो चीजें सीधी होती थी अब वो उल्टी है. सोचो से आयरा भला भला गाना गाई दो. पर ये थी वही हुआ है. अखलाक भाई बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है. साजा तहांजो गानो आहे लिस्ट में बाबा पंध में आ जान आयो सबर कयो सबर.

इस्तेमाल कर रहे हैं। अखलाक भाई कहते हैं डी स्किन जो नंबर बुधा दे ना उन्हें नंबर तवा मालूम वी सोता ठीक है सो नंबर जो आप बुधा तांगे प्रोग्राम में उन्हें नंबर से तुम कॉल या वरी मैसेज करी सड़ींदा कयो तो आपको सारी वो मालूम मिल जाएगी जो शायद आपको मुझसे नहीं मिल पाती। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए ठीक है। अच्छा हबीबुल्ला तेबू भाई आपको वेलकम हो गया आप प्रोग्राम में मौजूद है।

क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि हमने एंजॉय किया. और इसी के साथ साथ अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको मिल जाएगी वो खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं. लेकिन लेकिन अगर आपके करीबी जनरल स्टोर पर नहीं मिलते तो जो आपको नंबर बताया प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर रابطہ कीजिएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराते रहिएगा. और उसके बाद जो है ना आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगे तो आप वहां से जाकर इजीली परचेज कर सकते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और हाँ बिल्कुल आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मतलब समझी चाहती चवा.

अच्छा खूबसूरती त हर कोई चवंदो आहे न त असांखे मिले ज्यादा ज्यादा खूबसूरती मिले त तव्हां ज्यादा ज्यादा खूबसूरती हासिल करण चाहियो था त ॿिया प्रोडक्ट अगरि तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त हुननि खे गुड बाई टाटा चओ हाणे छो त हाणे मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इहो फ़ाइदो आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेडिकेटेड फार्मूलो आहे यानी की अगरि तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांजी जेका खूबसूरती आहे न उहा सेफ बि रहंदी ऐं तव्हांजे हुस्न में इज़ाफ़ो बि ईंदो रहंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां बेफ़िक्र थी करे लॻाए सघो था इस्तेमालु कयो ऐं पंहिंजी खूबसूरती जो ख़्यालु रखो।

बाबा असो भी हाँ चंगो हाँ खुदा हाफिज अव वरी तह मुलाकात मुझे थे पी 5 बजे वाले प्रोग्राम में। अच्छा फहीम इधर लास्ट में गाल कही था ऐसा तो नहीं होगा कि हम क्रीम लगाएं तो खूबसूरत हो जाएं, जब क्रीम छोड़ें तो पहले जैसे हो जाएं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम से बिल्कुल भी कोई भी मसलो न थींदो अगर तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर पाया तो जेका खूबसूरती तक मिली वह सिर्फ तवाजी होंगी, तवका कोई भी वापस न तो वी सके, चाहे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर या न कर, ठीक है। सो इस्तेमाल करो जो हुसन तक मिले तुम बबा दिल चाहे कर अड़ी का भी गाल कोने का। सो बेफिक्र करी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर अलावा वरी मिलूँ 5 बजे वाले प्रोग्राम में चंगो मोकलानी ना बाबू सन सलामत सास सलामत ख्याल रखना इतने का गलती माजरत क्यों था बाबा, ठीक है जिना फीडबैक रहे गाना रहे सभी का माजरत। सो अल्लाह हाफिज बाबाई लव।

0: में प्लाटनजी गैर कानूनी अलाटमेंट वाले केस की अस्तिता एहतसाब अदालत में बुधनी वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल एन ब्याश पेश न थे एहतसाब अदालत वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल एन बेन के नोटिस जारी कर छा समूरन जवाबदार के पेरे अक्टूबर से तलब कर वरतो नौशेरो फेरोज की अदालत में मोरू में सरकारी प्लाट के विकरे वे केस की बुधनी अगौणो वफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा जतोई एंटी करप्शन कोर्ट में पेश वकील बुधन बाद अदालत बुधनी 13 अक्टूबर तीन मुलतवी कर छी मुर्तजा जतोई सियासी केस है इंसाफ की उम्मीद है देरो भरसा पुराने तकरार का हाजिर हिंदड़ बजना कतल सिम शाख में पुराने तकरार का तैयार बजन फायरिंग करे सईद ए हाकिम के कतल कयो पुलिस मौजूद वाक्यो कणो कोस ए खोखर बरादरी जे दुरी में हलंदड़ पुराने
1: नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
3: डाडू सुठो
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold-based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सुप्रीम कोर्ट असा के नोटिस जारी करने का सवाल हुकुम दिखो जस्टिस अली बाकर नजफी पुछो तो सुप्रीम कोर्ट के दरख्वास्त के बुधन जोगो होने जो मामलो तय कर न घुर्जे हम अटॉर्नी जनरल चो तो बिल्कुल ये ही है आइनी तचरी जो अख्तियार हाने वफाकी आइनी अदालत वट है जस्टिस आमिर फारूक रिमार्क्स में चयो तो सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा हेठे केस त फौजदारी नोयत जो है असा वट केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ आयो है सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम त अन्या उबूरी है जस्टिस अली बाकर नजफी चयो तो असल सवाल तो बुधनी जो अख्तियार जो है सवाल वो है तो आइनी तशरी ए बुनियादी हकन जो कैस हाँ केर बुधी सके तो वफाकी आइनी अदालत पीटीआई बानी जे शफा अस्पताल मुंतकली जो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड तलब कर वरतो अदालत टिन्हीं कैदन जो दरख्वास्त बुधनी लाए मंजूर कर वरतूं

0: सऊदी एतादी फ़ौजनि पारां हुसी वाग़नि जे हमलनि जो सख़्त ऐं भरपूर जवाबु ॾियण जो ऐलान। यमन में सऊदी एतादी फ़ौजनि जे तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी चयो आहे त हुसी शहरनि ऐं शहरी मिल्कियतुनि खे निशानो बणायो वियो। हमलनि मां हुसिन जे इंतिहा पसंद सोच ऐं शिकतान वधाइण वारी पॉलिसी वाक़ी थी वई आहे। हुसी बाग़नि जे सऊदी अरब
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।